0: अरे भाई ये क्या हो रहा है?
1: अरे ढोलक बज रहा भाई, ढोलक
0: ढोला क्यों बज रहा है?
1: अरे शादी है यार, शादी
0: शादी हम भी चलेगा।
1: चलो चलो।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: A song that has received a great deal of praise and appreciation from our listeners. And I think there's something has to be said about acoustic music. All of the instruments there don't need any electronic trickery. Absolute gem indeed. जी हाँ दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं और मैंने आपसे कहा कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है. मेहमान है मालती रामबली जी. एंड इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, शी इज वन ऑफ द पीपल हु इज राइट इन द फोरफ्रंट डूइंग अमेजिंग वर्क विद हिंदी शिक्षा संघ. एंड ऑन द ओकेजन of Women's Month, she has written a very beautiful poem dedicated to women. So, Malti ji, namaskar to you.
1: Namaste, Veena ji.
0: And thank you so much for being with us in the studio today. Aapka swagat hai hamare studio mein. To chaliye hame sunaiye aapki kavita.
1: Sabse pehle is mauke ke liye dhanyavaad. To chaliye, kavita ka naam hai Nari. Mala tooti, मोती बिखर गए, इन्हें समेटना आसान नहीं, पर मन का बुनकर सब समेटती है नारी. लक्ष्मी तथा सरस्वती के रूप धारण कर धन कमाती, परिवार संभालती, अपनों और औरों का चित्रपट मुस्कुराती हुई रंगीन बनाती. समय समय पर शांत अशांत के बलवान धागे लेकर अपने मोतियों की रक्षा करती, बिखरने से रोकती है नारी. सदियों से ठोकर खाती, दुनिया के माया जाल में फंसती, कभी निकल पाती कभी नहीं, मगर सदा मुस्कुराती हुई झेलती नारी. प्रेरणा बनो ए बहन, तुम ताकतवर हो, अपनी मूल शक्ति को भूलो मत, दुनिया चाहे कुछ भी कहे.
0: धन्यवाद माला जी, बहुत ही खूबसूरत रचना है. तो हमारे श्रोताओं को बताइए इसका मतलब क्या है, मतलब कि इंग्लिश में.
1: अच्छा, ठीक है. तो द पोएम इज डेडिकेटेड टू वुमन, नारी. एंड देयर इज एन इमेज ऑफ अ नेकलेस. Mala tooti, moti bikhar gaye, the beads on a necklace. And the woman is the one who's able to pick up all these beads should they fall. Mm-hmm. In other words, keeping the family and society intact all the time. She takes care of her family, whether it's emotionally, whether it's financially. Sometimes her roop, her form is one of passive peacefulness, and other times she can be pretty vicious depending on the situation. But women have come through ages with this kind of situation, but no matter what the situation is, she manages to keep that mala, that chain, intact at all times. The last message is that dear sister, you are an inspiration, you are strong, don't forget your basic strength, no matter what the world says.
0: Mm-hmm. Beautifully written. Bahut, bahut, bahut khoobsurat rachna hai. Malaji, thank you for coming along to the studio and sharing your beautiful work with us.
1: धन्यवाद जी.
0: Namaste to you. जी हाँ दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं मोहम्मद रफी साहब की रूहानी आवाज के साथ. बहुत ही खूबसूरत रचना है, एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू एंजॉय इट.

बिल्कुल दोस्तों, खैर की बात है, मगर समापन की घड़ी करीब आ गई है और इसका मतलब है कि अब मुझे शुभ रात्रि कहनी है। जाने से पहले मैं आपको याद दिलाती हूँ कि 7 बजे के समाचार के बाद पारी आएगी टॉक एट 7 की। ऑफ कोर्स वंडरफुल टीम एट लोटस एफएम ऑलवेज ब्रिंग्स यू वेरी एंगेजिंग टॉपिक्स, सो डू स्टे ट्यून्ड आफ्टर द 7 PM न्यूज। अगले हफ्ते अगर भगवान की मर्जी हो तो हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार और शुभ रात्रि।

0: सा तो ठीक से लगाओ।
1: सा सा सा सा सा सा सा
0: सा
1: सा।
0: हाँ, अब गाओ।
2: अरे ये गाएगा क्या, इसके पास बोल तो है नहीं, सिर्फ धुन है।
0: अच्छा तो बोल मैं देती हूँ, जरा धुन तो सुनाओ।